सूचना एक तनाव सेवा हस्पिटल दुलेगौड़ा बीपी चोकमा यही भदौ 20 गते शनिबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका पेट मुटु छाती सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णराज अधिकारी, हार जोनी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मेघराज लामिछाने, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका एनोमेली स्क्यान थाइराइड सहित भिडियो एक्सरे डाक्टर सन्तोष बराल, छाला यौन कुष्ठरोग एलर्जी तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर जे महर्जन, मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष विजय महत, बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञसँग सेवा परामर्श लिन सम्पूर्णमा अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क तनहु सेवा हस्पिटल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 बीपी चोक तनहु, फोन 065414377, मोबाइल 98564043।

0: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
1: शुक्ला गंडकी टाइम चेक
2: यति बेला दिउँसोको ठिक 3 बज्यो।

0: स्कूल तथा कलेज ड्रेस पाइनुका साथै अर्जेन्ट सिलाइन्छ।
1: बरेली टेलर्स, दुलेगौडा भित्री बजार, प्रोपाइटर प्रेम परियार। मोबाइल 9841608029। दमौली शाखाको लागि सम्पर्क 9807613425।
2: आरोग्य स्किन केयर इन्टरप्राइजेस दुलेगौंडाको फ्री हेयर एण्ड स्किन क्याम्प सम्बन्धी सूचना। यही भदौ 17 गते बुधबार यस इन्टरप्राइजेसमा निशुल्क हेयर एण्ड स्किन क्याम्प हुने भएकाले परामर्श तथा उपचार गरी लाभ लिनुहोला। सेवाहरू छालाको एलर्जी, डण्डीफोर, दाग धब्बा र कपाल झर्ने समस्याको जाँच, अत्याधुनिक मेसिनद्वारा छाला र टाउको छालाको परीक्षण, जाँचपछि आवश्यक क्रिम वा औषधिमा 5% छुटको व्यवस्था। क्याम्प हुने समय बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म। सम्पर्क आरोग्य स्किन केयर इन्टरप्राइजेस, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा, दुलेगौंडा पोलिक्लिनिकको आडमा। थप जानकारीको लागि मोबाइल नम्बर 9846094543।
3: टीवीएस कम्पनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौंडा में। टीवीएस कम्पनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री, सबै ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग, गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एण्ड सर्विस सेन्टर एंजल राइडर्स प्राली, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा, प्राइम बैंक सँगै शुक्ला गण्डकी एफएम को पारीपट्टी। मोबाइल नम्बर 9856309982 र 9705620209।
4: TVS साथ छ हाम्रो।